0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Township. City FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Behind the Kusad budget.
5: टाइम चेक को साथ न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू तुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू